वेत गावत पाड़ करे भी आहो खटका गल दसेरा हो। सुन वेखो लोका एहो विड़ान मानंदा ना सो जान पौड़ी।

साहिब दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होवे प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै भावे सो करे मनो तिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी।

0: बदे जंपर जाए मला पहला
1: सबो सुधक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जतौन रिस्क संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझया ना सुत नाहे
2: पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले ता नदरी आईयां जा तिस भाणा ता मन मसाईयां कर हुक्म मस्तक हाथ धार विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां।

लगा रब से ती देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप कर जाहे, परवाह ना है किसे केरी बार सचे ना, दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देते काहे। दीवाने को कलम का हमारा तुम मेल दर ले।

आपे करणा क्यों कला पे ही तै धारियै देख कि अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई बारी है जिसके जीव प्राण है कि वो साय

पौड़ी जे सेवै सुख पाइये सुसायम सदा संभालिया जे तीता पाइये अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल ना कीचे दे लम्मी नदर निहालिए जो साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा ढालिए किछ लाहे उपर कालिए किछ लाहे।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz, DRM 864 kHz, FM ਬੈਂਡ 100.8 MHz, FM ਬੈਂਡ 100.9 MHz ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
1: ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्य

0: मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ईरान के नेतृत्व में बिखरा हुआ ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के एल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

0: उही संतुष्ट है, जिसदे मन विच खुशी हुंदी है, उही जीवन है जो सेवा विच बतीत हुंदा है।
1: ईसी ज्ञान अमृत, आओ सरवण करते हैं पति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

उस परम पिता परमात्मा दे दरबार लगवा रहे हाजरी भगती संगीत दे प्रोग्राम आराधना दे नाल।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

हुणे तुसी सर्वण कर रहे सी श्री रामचरित्र मानस दा लड़ीवार पाठ मानस कान। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोवर्ट्स दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे 6:50 हो रहे ने। आओ हुण तुहानू परिचय तहत अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दी जानकारी दे दईए।

0: क्यापिटल्स्दलेन जयपुरस्य सवाईमानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स्दलं सप्तस्तोभैः पराजितं। तत्रैव अद्य चेन्नई सुपरकिंग्स्दलं सायं सार्धसप्तवादने चेन्नईस्थे एम ए चिदम्बरं क्रीडांगणे मुंबई इंडियन्स्दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बजे ने पेश ने मुख खबरां। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई विच 349 किलोग्राम कोकीन जब्त करके नशीले पदार्थां दे एक वड्डे अंतरराष्ट्रीय रैकेट नू पर्दाफाश किया है। सरकार ने नागरिकता एक्ट 2026 नू नोटिफाई कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने असम दे मुख्यमंत्री हिम्मत बसवा शर्मा दी पत्नी विरुद्ध कथित झूठे बयानां दे नाल संबंधित मानहानि दे मामले विच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा नू अगाऊं जमानत दे दित्ती है। चोन कमीशन ने पश्चिमी बंगाल दे 15 पोलिंग स्टेशनां ते दुबारा पोलिंग दा आदेश दिता है। मजदूर दिवस दे मौके ते देश दे समाजिक आर्थिक विकास विच मजदूरां दा वर्ग दे वडमुले योगदान नू सम्मानित करन दे लई पंजाब विधानसभा दा एक विशेष इजलास होया। पंजाब विच मरदमशुमारी 2027 लई शुरू हुई स्वै गणना इस महीने दी 14 तारीख तक जारी रहेगी। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम कमिश्नरां नू आवारा कुत्तियां दे खतरे दे नाल नजिठण लई तुरंत कार्रवाई दे दिते निर्देश। अमृतसर पुलिस ने नशियां ते हथियारां दी तस्करी करन वाले दो गिरोह दा पर्दाफाश करदियां 10 किलो तो वध हेरोइन 4 पिस्तौलां समेत 3 मुलजमां नू कीता गिरफ्तार। पंजाब कमिश्नरेट पुलिस दे साइबर क्राइम थाने वलों गुम होए 31 मोबाइल फोन लभ के असल मालकां नू सौंपे गए। पुलिस ने नागरिकां नू गुमे जां चोरी होए मोबाइल फोनां दी रिपोर्ट नज़दीकी सांझ केंद्र या CEIR पोर्टल ते दर्ज कराउण दी अपील कीती। झारखंड दा 1-7 साला मुंडा एकांश सिंह पल्क स्ट्रेट पार करन वाला सब तो घट उम्र दा तैराक बन गया है। ईसंजी हुन तक दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7:02 हुए ने पेश है जी प्रोग्राम सोनी सवेर।

नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। असी अपने सारे ही सुनने वालों का प्रोग्राम सोहनी सवेर दे विच स्वागत करते हैं। सोहनी सवेर, बिल्कुल जी, क्योंकि हर सवेर लेके आउंदी है अपने नाल खुशियां, ज्ञान ते नाल ही मिठी मुस्कान। अज दी इस सुहावनी सवेर दे विच

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: इन्हां जानकारियां तो बाद एक बार फिर तो स्वागत कर दिया तुहाडा प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच। जी हाँ दोस्तों, कल्पना करो, एक बच्चा है जो दुनिया नू साड़ी वांग नहीं देखता। उसकी दुनिया च रंग वखरे ने, आवाज़ा वखरिया ने, ते भावनावां भी वखरे ढंग नाल बयान हुंदिया ने। पर की ओ घट है? नहीं, वह सिर्फ वखरा है, खास है। ते आज दा ए दिन वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे हर साल की तरह 2 अप्रैल नू मनाया जा रहा है। ये दिन 2007 दे विच यूनाइटेड नेशन दे वल्लों ऐलाना गया सी तां जो लोकां नू ऑटिज़म बारे जानकारी मिले ते समाज विच स्वीकारता वधे। ऑटिज़म की हुंदा है? एक डेवलपमेंट कंडीशन है जिसका मतलब है बच्चे का सीखण का ढंग वखरा हुंदा है, गलबात करन दा तरीका भी वखरा हो सकता है, उसनू सोशल इंट्रैक्शन दे विच मुश्किल आ सकती है। पर याद रखने वाली गल ये है कि हर ऑटिज़म बच्चा यूनीक हुंदा है। कोई ड्राइंग दे विच जीनियस हुंदा है, कोई म्यूजिक दे विच ते कोई मैमरी दे विच। इस दिन नू लाइट इट अप ब्लू भी कहिंदे ने। नीला रंग शांत समझ ते सहयोग दा प्रतीक है ते इस दे लई नीले रंग दा प्रयोग कीता जांदा है। इसलिए दुनिया भर च बिल्डिंग नीली रोशनी दे नाल सजाईयां जांदियां ने। हर बच्चा खास हुंदा है, उसनू कंपेयर ना करिए, समझिए ना कि जज करिए। प्यार ते सबर दे नाल सब कुछ संभव हो सकता है, यही सिखांदा है सानू अज दा दिन ते यही सिख्या भी दिंदा है। कदे किते अजिहा बच्चा वेखो ता उसनू डिफरेंट ना कहो, अलग ना कहो, उसनू कहो तू खास है, यू आर स्पेशल।

बिल्कुल जी, एक होने नहीं चाहिए। अजिहे दिन सानू बखूबी याद करवाउंदे ने कि साड़ियां होर भी जिम्मेवारियां ने, अजिहियां जिम्मेवारियां जिन्हां नू अखों ओले नहीं किया जा सकता। खैर, प्रोग्राम चल रहा है जी, सोहनी सवेर ते प्रोग्राम दे विच हुण गल उन्हां दी जिन्हां दी अज है बर्थ एनिवर्सरी। जी हाँ, अज दा बर्थडे ओ जिहड़े खास ने जिन्हां दे बारे ये कह सकते हैं, एक आदमी जिन्हां दे हाथ विच कैमरा सी पर दिल विच कहानियां दा समंदर, जो सिर्फ फिल्मां नहीं बनाउंदे सी बल्कि ओ उन्हां फिल्मां दे विच जान पा देंदे सी, कहानियां अजिहियां सिरजदे सी जिहड़ी जिंदगी नूं पर्दे दे उतार दिंदियां सी। जे हां, गल कर रहे हां सत्यजीत रे हुना दी। अज दे दिन जन्मे ते सिर्फ पेशे वजो डायरेक्टर नहीं, लेखक, संगीतकार, चित्रकार, कहानीकार, ओ भारतीय सिनेमा दे सब तो वड्डे नामा विचों इक ने। उन्हां दियां फिल्मां सानू दिखाउंदियां ने कि असली जिंदगी सच्चियां भावनावां ते सादगी दी खूबसूरती दे विच ने। उन्हां दी सब तो मशहूर फिल्म पत्थर पांचाली, ये सिर्फ फिल्म नहीं सी, एक पिंड दे परिवार दी जिंदगी दी सच्ची कहानी सी। छोटे बच्चियां दे सुपने, माँ दी ममता, गरीबी दे बावजूद खुशी, इस फिल्म ने दुनिया नूं दसिया सादगी भी दिल नूं छू सकती है। इन्होंने कई वड्डियां उपलब्धियां हासिल कीतियां, कई अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जीते, ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे नाल इन्हां नूं सम्मानित किया गया। उन्हां दियां फिल्मां अज भी सीखण दे लई उदाहरण बनदियां ने। बहुत सारे गीत जड़े ने उन्हां दी इन्हां दे नाल तार एकदम जुड़ी हुई महसूस हुंदी है। ए जिंदगी गले लगा ले, हसकी भी गम सह लै, अजे ही सुने दिंदी है, जिथे दुख भी हुंदा है पर ओ सानू जिंदगी दे नाल प्यार नाल जीना सिखाउंदे ने। वड्डी

0: कभी तो हंसाए।
1: कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, पर रुलाण वालियां कीमता जड़ियां ने ना वो LPG सिलेंडर दिया हो गया ने। खास करके जी हाँ, गल कर रहे हैं खास LPG सिलेंडर वो वाली जेडे व्यापारक तौर पर वरते जाते ने। केंद्र ने देश भर के 19 किलोग्राम वाले व्यापारक LPG जेडे सिलेंडर ने उन्हां दी कीमत दे विच 993 रुपए का वाधा कर दिता है, पर अजे घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत विच कोई बदलाव नहीं आया। 19 किलोग्राम वाले व्यापारक सिलेंडर की कीमत हुण दिल्ली दे विच 3,071.50 रुपए हो गई है। इस तो पहला व्यापारक सिलेंडर जिहड़े सी उन्हां दी कीमत 2,078.50 रुपए सीगी। इस तरह व्यापारक सिलेंडरां दी कीमत वध जाण ते होटलां रेस्टोरेंटां दे विच जिहड़े खाण पीण वालियां चीज़ां दी कीमत दे विच वी वाधा होवेगा, जिसका असर आम लोग जनता ते साढ़े सारियां ते पवेगा। इसका असर उन्हां लोकां ते होर भी वध पवेगा जो खाण पीण का छोटा मोटा काम करते ने। उन्हां नूं हुण ज़्यादा पैसे गैस सिलेंडर ते लाने पैणगे। इस दे दौरान 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की जिहड़ी कीमत है ना वो 261 रुपए वध गई है। 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत पहला ना जिहड़ी पहला सी वो सी 549 रुपए, जो कि हुण वध के 810 रुपए हो गई है 50 पैसे दे नाल। ते 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत हुण घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दर 913 रुपए तो थोड़ी ही घट रह गई है। जी हाँ, ते इस करके जिहड़े व्यापारक तौर

0: ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC U17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
3: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। We diversified
4: our sources. हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर

0: डीजल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे इस संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन की महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चिउ हिस्यांग चिए और वांग चीलिन को हराया।

0: में आयुष शेट्टी ने लिंग चुनयी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांजरा दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांजरा दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया कर।

लो जी, इस खूबसूरत गीत दे नाल हो गई है शुरुआत। ते पता है, जिंदगी जिहड़ी है ना, वह वड्डियां चीज़ां दे विच नहीं हुंदी, छोटियां छोटियां खुशियां दे विच लुकी हुंदी है। माँ दी मुस्कान, दोस्तां दी हामी अते एक शांत खूबसूरत दिन भी। जदों रस्ते औखे होण तां रुकणा नहीं, हिम्मत उम्मीदां वाली ए जिंदगी। जिंदगी जिहड़ी पहेली वांग जापदी है, कदे हसना कदे रोना, बिल्कुल हमेशा ही खुशी नहीं रहिंदी ते हमेशा ही दुख नहीं रहिंदे, ये तां मिक्स है। हसना दा भी, रोण दा भी, सिखण दा भी ते अगे वधण दा भी। सो जिंदगी जिहड़ी है ना, वो मुस्कुरा के हस के गले लगाउंदी है ते फिर अपने आप ही खूबसूरती जिहड़ी है उछलक पैंदी है।

लो जी, संतराल दे बाद फिर तो स्वागत कर दिया तुहाड़ा प्रोग्राम फिल्म संगीत दे विच। ते प्रोग्राम दे विच अगला खूबसूरत गीत जिहड़ा कहिंदे जिंदगी उदों खूबसूरत हुंदी है जदों थोड़ा ते साडे कोल हुंदा पर थोड़ी दी कमी भी हुंदी है, क्योंकि ये कमियां ही सानू अगे वधन दे लई प्रेरित करदियां ने।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स थे। डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। सवेर दे 10 बज रहे ने। आओ हुण सुनदे आ विचार चर्चा। सोशल मीडिया बनाम रवायती मीडिया। भाग लैण जा रहे ने राजीव भास्कर, रमनप्रीत कौर, बलजीत बराड़। इसनू साडे बठिंडा ते पटियाला केंद्र भी नालों नाल प्रसारित कर रहे ने।
1: मीडिया जो कि एक अजिहा साधन है जिसके जरिए बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी खबरां, बहुत सारा मनोरंजन जड़ा है एक थां तो दूजे थां तक जाता है और एक जगह तो एक वड्डे लोगों के ग्रुप तक पहुँचता है और

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो

50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है जी प्रोग्राम हैलो फरमाइश। हैलो फरमाइश प्रोग्राम सुनन वालियां नूं रुपिंदर दी प्यार भरी नमस्कार। अज दे इस प्रोग्राम दे विच रोज़ाना दी तरह ही तुसी साडे नाल फोन ते राबता कायम कर सकदे हो। 081-43-143 नंबर कर अजे तुहाडा इंतज़ार। तुसी इस फोन नंबर ते कॉल मिला के सुन सकदे हो अपनी पसंद दा गीत। सो जद तक तुसी साडे नाल हो रहे हो कनैक्ट, तद तक दे लई प्रोग्राम दे विच तुहानू जी आयां नूं कहण दे लई वेलकम फिल्म दा ये गीत सुनिधि ते शंकर महादेवन होना दियां आवाज़ां दे विच।

0: मतलब समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पंजाबी में नंबर है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर फिर से मैंने उसमें बहुत रिसर्च किया और फिर डायल किया तो मैम लग गया।
1: अरे अरे बिल्कुल लग गया नंबर, और हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक नंबर जो है ना वो हिंदी में भी पहुंचा दिया करें, है
0: हाँ
1: ना?
0: जी मैम, हिंदी में नंबर होता है ना तब मैम समझ आता है। हमारे महाराष्ट्र में तो हिंदी और मराठी होती है ना, तो पंजाबी समझ ज्यादा नहीं आती, पर आपसे जुड़ती हूँ तो पंजाबी भी थोड़ी थोड़ी सी सीख ली है
1: अरे वाह, बिल्कुल
0: जी।
1: बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी तीनों में बोल दिया करें, है ना? हमारे श्रोतागण इतनी दूर दूर से हमारे साथ यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना? तनुश्री, जितनी प्यारी आपकी आवाज़ है, आप भी प्यारी हैं, तो बताइए अब गीत कौन सा सुनेंगी?
0: फिल्म का नाम है लव स्टोरी, और मैम आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा वो गुनगुना सकती हूँ
1: जी बिल्कुल।
0: जी। देखो मैंने देखा है एक सपना फूलों के।

0: लो जी बिल्कुल खासम खास वेलकम इस गीत दे नाल ते आओ जान दिया साडे नाल अज दी पहली कॉलर कौन जुड़ी है। हेलो
1: मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट चुट चुट मैम को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग
1: जी मैं तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ ग्राम गुनोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से।
0: बेहद स्वागत है तनुश्री आपका।
1: जी
0: और
1: धन्यवाद मैम।
0: जी तनुश्री जी फिर आप क्या करते हो?
1: जी मैम मुझे 10वीं से दिखाई नहीं देता तब से मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत से जुड़े हो?
1: जी।
0: अरे वाह बेहद
1: और आपसे बात करना मुझे बहुत मैम अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो, आपने नंबर मिलाया है और आप पहुंचे हो,
1: जी
0: है ना।
1: तो आपका

0: मैम आपको हमारे सभी श्रोताओं को और मेरे पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
1: जी बिल्कुल, सब तक पहुंच रहा है ये गीत, जहां तक
0: ओके बाय
1: आवाज जा
0: बाय
1: रही है। बिल्कुल, कॉल
0: जी
1: करने के लिए शुक्रिया तनुश्री।
0: बाय बाय।
1: बाय बाय।

लो जी, प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो फरमाइश ते हेलो फरमाइश प्रोग्राम दे विच वेला हो गया जी, एक छोटे जहे अंतराल दा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: लो जी, इस अंतराल तो बाद स्वागत कर दें आपने अगले कॉलर का। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: भजन सिंह बोल रहा है, प्रोजपुर तो, पिंड साबुना।
0: जी स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: हां स्वागत मैडम
0: जी। भजन सिंह जी, फिर दस दियो केड़ा गीत सुनोगे?
1: मुगले आजम के

जी ठीक है जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। लो जी, मुगले आजम फिल्म चो गीत सुनना चाहते ने।

0: ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਵਲ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
1: ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਲਾਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ,
0: ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ।
2: ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
3: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਨਿਗਮ। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी जो 31 मई तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के रामोन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रानुकम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की

0: केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रानुकम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: We diversified our sources.
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया। ये कदम यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा ट्रंप के टर्नबेरी गोल्फ कोर्स में हुए समझौते के एक साल से भी कम समय बाद उठाया गया है। इसके अंतर्गत अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% शुल्क निर्धारित किया गया था। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 से हरा दिया। ये आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके

0: हाथ लगदा ते डोरी हो जानिए आंदा ही सवाद ते बहाने होर लानिए गाल नाल लग नी गाल नाल लग गाल नाल लग गला मुक जान सारिया
1: हाथ लावे।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਨਿਗਮ। सर्वोच्च न्यायालय ने मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचे की पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस कदम को चुनौती देने वाले तृणमूल कांग्रेस के लिए निर्णय एक बड़ा झटका है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अधिकारियों का चयन निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर पहले से ही एजेंट और पर्यवेक्षक मौजूद हैं। आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है।

यह कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15

0: सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: We diversified our sources.
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार,
1: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत कर दिया थोड़ा सारियां दा वैसे वीडियो प्रोग्राम दे विच हाजिर हो गया जी। लेकिन मैं हाँ तरनजीत कौर ते मेरे नाल ने
0: हरप्रीत जी, और हरप्रीत ते कहंदी पई है कि मैं हाजिर हो गई हाँ। तरन ने भी कहता हाजिर हो गए हाँ,
1: जी।
0: पर उम्मीद है भी करते हैं कि साढ़े जिहड़े सुनने वाले ने वह भी हाजिर हो गए ने।
1: उन्होंने
0: ऑन कर लिया अपना रेडियो, लड़ियां भैणा ने इस वेले रसोई दे विच, क्योंकि दोपहर का वेला है, दोपहर की सब्जी सुब्जी बना रही ने, रोटी का पूरा इंतजाम हो रहा है। ते सारी गलबात करन तो पहला, सिलसिले शुरू करन तो पहला मेरा फर्ज बनता तरन थोड़े तो पूछा की हाल है।
1: बिल्कुल जी, हाल ठीक ठाक ने हरप्रीत जी। तो जिवें तुसीं गल कीती है ना कि इस टाइम जिन्हें भी सुनने वाले ने उहदे विच खास करके जो औरतों की गल करिए तो रसोई दे विच होणगे, ते किते ना किते तुहानूं पता है कल जदों लेबर डे भी सी तां बड़े जोक मीन्स भी बन रहे सी कि सब नूं छुट्टी मिल जाती है उस दिन की,

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो
2: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: हाँ जी, वसदे बेटे प्रोग्राम चल रहा है और फरमाइशी गीतां दा जिहड़ा सिलसिला है झांजरा दे बोर, वह लैके असीं हाजिर होए हुए हैं।
5: बिल्कुल,
4: ब्रेक लै ली सीगी ते होर चिट्ठियां भी साडे हाथ च हैगियां ने ते
5: करिए शुरू फिर।
4: बिल्कुल जी,
5: अगलियां किहदियां किहदियां फरमाइशां साडे तक पहुंचियां ने। पिंड कड़ियाणा जिला फाजिलका पंजाब तो सानू सत श्री अकाल कह रहे ने। मलकीत सिंह कड़ियाणा जी, मनजीत

0: कौर बठिंडा दीपेंद्र सिंह चेयरमैन पोता गुर शबद सिंह समूह बराड परिवार ने सानू ये चिट्ठी भेजी है। इसी तरह मुल्लापुर तो सानू मैसेज आया जी, ये इन्होंने अपने नाम तो नहीं लिखे, बस ये कह कि सानू थोड़ा प्रोग्राम बहुत वधिया लगता है ते तुसी सानू कोई भी गीत सुना दिओ। इसी तरह मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज जी वहां दी भी सानू फरमाइश आई है। थोड़े को कड़िया कड़िया फरमाइश आई हैं जी?
1: पिंड मूलिया वाली जिला फाजिलका तो विनोद काठपाल, परवीन काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जन्नत काठपाल, काका काठपाल। कोटली कला पंजाब तो यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह, गुरजोत सिंह। मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल। जिला मुक्तसर पिंड मोहाला तो पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोहल्ला, दर्शन बराड़, मलकीत कुरियाणा। ऐ सारे सुनना चाहते ने हरजीत हरमन की आवाज़ के गाया गीत, तो फिर सुनो।
0: बिल्कुल जी, सुनानियाँ तो फिर कर दिया होर गल्लां बातां आपां फर्स्ट वीडियो प्रोग्राम के।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ, ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगण कर्मियों का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले 2 घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना

0: कि 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा

0: घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फागन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाण वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। सवा 1 तो 2:15 तक तुसी सुणोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस विच खबरां आपो अपने समय मुताबक निर्धारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती तहत अज तुसी मोहित प्रताप दे गाए लोक गीत सुणोगे। दूजी सभा विच 4 दीआं मुख खबरां तो बाद 4:02 ते प्रोग्राम सुणोगे खेड संसार। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। शाम 6:30 दा समा रहेगा देहाती प्रोग्राम दा। अज इस विच सुणोगे कम दीआं गल्लां, मच्छी पालण दी महत्ता।

इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर सुखवंत कौर। इस तो इलावा पंजाबी नाटक सुनोगे भुलेखा। कल दे प्रोग्राम मौसम दा हाल ते गीत संगीत भी सुनाया जाएगा। सत्त वज के 40 मिनट ते तुसी सुनोगे साहित्य सुधा। संस्कृत साहित्य विच दसां नौवां दी किरत, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर सुरेंद्र पाल। सत्त वज के 50 मिनट ते स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनोगे लम्हे। जिंदगी दे फलसफ्यां ते आधारित प्रोग्राम पेश होएगा जिंदगी हसीन है, इस दा समां रहेगा रात 8 बजे। सवा 8 बजे सुनोगे सुर सरिता। साडे दिल्ली केंद्र तों तुसी सुनोगे रात 8:45 ते समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट, 9:30 बजे साहित्य भारती ते रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस विच भाग लैण वाले कलाकार होणगे HM समिथा ते सिंधु सुचेतन। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जाणगियां। DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जरिए दिने 3 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 ते सौगात प्रोग्राम दा आनंद माणोगे। इस सन अज रात तक प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समां।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी रमेश लाल तो प्रदेशक खबरां सुनो। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा मैंबर संदीप पाठक खिलाफ गैर जमानती धारावां तहत FIR दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही विच आम आदमी पार्टी के 6 होर राज्यसभा संसद मैंबरां समेत भारतीय जनता पार्टी विच शामिल होए सन। इस कार्रवाई नाल पंजाब विच एक नवा सियासी विवाद पैदा हो गया है। सूत्रां अनुसार पंजाब के 2 ज़िलों विच 2 वख-वख FIR दर्ज कीतियां गईयां ने। हालांकि दोवां ज़िलों के नावों का हाले तक अधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया। भाजपा विच शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी के संसद मैंबरां विचों 2 विरुद्ध यह दूजी अजिही कार्रवाई है। वीरवार को पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड PPCB के अधिकारियों ने राज्यसभा मैंबर रजिंदर गुप्ता की मालकी वाले ट्राइडेंट ग्रुप के एक टैक्सटाइल यूनिट से छापा मारिया। इस दौरान पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने श्री पाठक विरुद्ध FIR दर्ज करने आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंडों का सबूत दसिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जाखड़ ने कहा कि उन्होंने नेतावान के भाजपा में शामिल होने तो तुरंत बाद आम आदमी पार्टी को उन्होंने कमियां दिखाई देन लगियां ने। पंजाब सरकार ने प्रशासकी फेरबदल करदिया 6 IAS अते 39 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिते ने। इन्हां विच जीरा, पठानकोट, रायकोट, लोपोके, फतेहगढ़ साहब, राजपुरा, मौड़ मंडी, होशियारपुर, जलंधर एक, अमृतसर एक, भवानीगढ़, तलवंडी साबो अते बसी पठाना के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी शामिल ने। सूबा सरकार वालों जारी हुक्मां अनुसार कई खेतरी ट्रांसपोर्ट अधिकारियों भी तब्दील किया गया है। मुख्य IAS अधिकारियों में पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के मुख्य कार्यकारी नीलमा गृह मामलों के सकत्र का चार्ज दिता गया है। संदीप कुमार को साक्षी सानी की थान ग्रेटर मोहाली एरिया विकास अथार्टी GMADA के नवे मुख्य प्रशासक वजों तैनात किया गया है। साक्षी सानी डायरैक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नाल नाल पंजाब शहरी योजनाबंदी और विकास अथार्टी पुड़ा के मुख्य प्रशासक भी बने रहेंगे। अभिजीत कपलिश जो कि डायरैक्टर खाणा भू विज्ञान का चार्ज संभाल रहे हैं श्री

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया

54,000 मीट्रिक टन रोज़ाना हो गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व टकराव को खत्म करने लिए ईरान की ताज़ा तजवीज़ को रद्द कर दिया है। ईरान ने सालसा राही अपनी सोधी हुई तजवीज़ भेजी सी। सरकारी मीडिया ने कहा कि श्री ट्रंप ने गलबात प्रगति को स्वीकार किया है, पर कहा कि वह तजवीज़शुदा शर्तों तो संतुष्ट नहीं है। फारस न्यूज एजेंसी समेत ईरानी सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि देश की लीडरशिप अंदरूनी अस्थिरता दी अटकलों को गलत साबित करने लिए काम कर रही है। इस दौरान लेबनान में इसराइली हमलों में एको दिन 30 तो वध लोग मारे गए हैं, जिस नाल पिछले महीने अमरीका की सालसी वाली जंगबंदी उलंघना बारे चिंतावां वध गई ने। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई विखे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस नाल होएगा। यह मैच शामी 7:30 बजे खेडिया जाएगा। पहला कल दिल्ली कैपिटल्स ने जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम च राजस्थान रॉयल्स नू 7 विकटां नाल हरा दिता। बैडमिंटन में डेनमार्क के होरसेंस में थॉमस कप 2026 के सैमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला सैमीफाइनल में फ्रांस नाल होएगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे नू 3-0 नाल हरा के सैमीफाइनल में जगह बनाई है। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चो तियन चेन नू हरा के भारत नू शानदार शुरुआत दवाई। इस तो बाद सात्विक साई रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चू हस्यांग चेत और वांग ची लिन नू हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन जी नू हरा के टीम नू जित यकीनी बनाई। पी वी सिंधु की अगवाई वाली भारतीय महिला टीम ओबेर कप 2026 ग्रुप पड़ा तो अगे वधन में नाकाम रही है। चीन तो हारन तो बाद टीम टूरनामेंट तो बाहर हो गई। अंत में चुनवियां खबर एक बार फिर सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणों से वोटों की गिनती लई केंद्र सरकार के मुलाजमान की नियुक्ति चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की पटीशन में दखल देने तो इनकार कर दिता है। पश्चिमी बंगाल के दो विधानसभा हल्कों में 15 वोट केंद्र से अज मुड़ पोलिंग हो रही है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा मैंबर संदीप पाठक खिलाफ गैर जमानती धाराओं तहत FIR दर्ज की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साल 2026-27 चार संसदीय कमेटियां का पुनर्गठन किया है। IPL क्रिकेट में अज चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस नाल होएगा। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के दो असम्बली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों के नए सिरे से तश्कील की है। भारत और नेपाल ने आइंदा मॉनसून से पहले सैलाब की पेशगोई के मॉडल के बारे में आज तबादले ख्याल किया। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और आज शाम IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने हिदायत दी कि इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। ये फैसला तृणमूल कांग्रेस के लिए एक धचका समझा जा रहा है, जिसने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अफसरान के इंतखाब का इख्तियार इंतखाबी कमीशन के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि हर काउंटिंग टेबल पर पहले से ही एजेंट्स, सुपरवाइजर्स और मुशाहिदीन मौजूद होते हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की मौजूदगी पर एतराज की वजह समझ से बालातर है। कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसरान रियासती हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं, इसके अलावा

0: गया था अलर्ट सिटीजन्स सेफ नेशन। इस पैगाम पर आवाम की जानिब से कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक आजमाइशी पैगाम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर लोगों को मोबाइल फोन पर ऐसा पैगाम मौसूल हो तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि यह भारत के मोबाइल पर मबनी आफात से मुतल्लिक नए मुवासलाती निज़ाम का पैगाम है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, सिक्किम, जैली, हिमालयाई मगरब बंगाल में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले दो दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कौमी राजधानी में आज सुबह कम से कम दर्ज हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहां हल्की बारिश के बाद दो दिन तक दर्ज हरारत में कमी रही। IMD ने अगले दो रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ज्यादा रन के निशाने को पार करके जीत हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को एहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के 2 असेंबली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की नए सिरे से तश्कील की है। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरक कमेटी की 11वें मीटिंग में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले दो दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरों खबरां तो बाद फिर हाजिर होए हैं तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। तुहाडे नज़र करन जा रही हां जुर्म फिल्म दा गीत, आवाज़ां कुमार सानू ते साधना सरगम दियां। गीत दा आनंद माणो।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: फिर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली

0: मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना

0: उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
2: We diversified our sources.
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताज़ा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम

7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटब�ल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार, कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने मोहित प्रताप। आओ सुनदे आं इन्हां दी आवाज च सब तो पहले सुल्तान बाहू।

रंगली धरती प्रोग्राम च हुणे तुसी मोहित प्रताप दे गाया सुल्तान बाहू सुन रहे सी। आओ हुण सुनदे हां इन्हां दी ही आवाज़ च साडा चिड़ियां दा चंबावे बाबला असां उड जाणा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार

0: रही हूँ, मैं मेरे पॉइंट कट होंगे, फिर मैं सोचूंगी अटैक करने का भी, नहीं मैं हार रही हूँ, मैं हूँ अटैक करके अपने पॉइंट कवर करने हैं।
1: अच्छा जसप्रीत, हर पहलवान का ना कोई ना कोई फेवरेट दा होंदा जिदे च लाउण च उहनूं महारत हुंदी है और उसे ताक च रहिंदा है कि मेरा ये दा लगना चाहिए, तुहाडे नाल किदां है जी?
0: हाँ जी, हर एक दा अपनी अपनी टेक्निक हुंदी है, जिवें मेरा लैग अटैक आ, मतलब शुरू तो ही मेरा फेवरेट रहा, जो ज्यादातर मेरा कुश्तियां च लगदा भी है लैग अटैक।
1: अच्छा साडे सुनण वालियां नूं दस्सो कि कुश्ती दा सफर किहड़े अखाड़े तों तुसीं शुरू कीता सी, अज इत्थे तक पहुंचे?
0: सर मैनूं 13 साल हो गए लगभग कुश्ती करदे नूं, ते मैं जदों मैं 9वीं क्लास पढ़दी सी उदों ऊंचे पिंड संघोल फतेहगढ़ साहिब विच सेंटर बने हुए सी, राजवीर कोच साहिब हुंदे सी, पर हुण उहनां दी 2016 च डैथ हो गई सी,
1: जी।
0: हाँ मेरी कुश्ती की शुरुआत उन्हां कोल ही हुई सी।
1: सो साडियां शुभकामनावां तुहाडे नाल ने, असीं आस करांगे कि अपनियां कमजोरियां ते फतेह पा के तुसीं फिर तों दोबारा भारत लई सोने दा तमगा अगली बार लेके आओगे।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: बहुत मेहरबानी गलबात लई।
0: ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी,
1: डेनमार्क विच अजकल चल रहा है थॉमस बैडमिंटन कप 2026, जिस विच भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करदिया सैमीफाइनल विच अपनी थां पक्की कर ली है ते देश लई घट्टो घट एक तमगा पक्का कर लिया। ग्रुप ए विच भारत नूं चीन, कैनेडा ते आस्ट्रेलिया दे नाल रख्या गया सी। भारत ने अपने पहले दो मैचों विच कैनेडा नूं 4-1 नाल ते आस्ट्रेलिया नूं 5-0 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल लई क्वालीफाई कर लिया सी। चीन दे खिलाफ कांटे दी टक्कर सी, ग्रुप दे आखिरी मैच विच भारत दा मुकाबला चीन नाल होया सी। हालांकि भारत 2-3 नाल हार गया, पर नौजवान खिडारी आयुष शेट्टी ते तजर्बेकार HS प्रणॉय ने अपने सिंगल्स मैच जीत के चीन नूं सख्त टक्कर दित्ती। 1 मई नूं होए क्वार्टर फाइनल मुकाबले विच भारत ने चीन तैपई नूं 3-0 नाल हरा के सैमीफाइनल विच दाखला लिया। पहले सिंगल्स मुकाबले विच लक्ष्य सेन ने विश्व दे नंबर 6 खिडारी चौ तेन चेन नूं 18-21, 22-20, 21-17 नाल हरा के भारत नूं 1-0 दा वाधा कराया। दूजे मैच विच सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी दी जोड़ी ने च्यू सियांग ची ते वांग ची लिन नूं 23-21, 19-21, 21-12 नाल हरा के स्कोर 2-0 दा कर दिता। तीजे मैच विच 20 साला आयुष शेट्टी ने ऑल इंग्लैंड चैंपियन लिन चुन यी नूं 21-16, 21-17 नाल सीधे गेमां विच हरा के भारत दी जित ते मोहर ला दित्ती। सैमीफाइनल विच पहुंचण नाल भारत दा कांसे दा तमगा ते पक्का हो गया है। भारत का मुकाबला हुण फ्रांस ते जापान दे जेतू नाल होएगा। इस तो पहला भारत ने साल 2022 विच इतिहास रचदियां सोन तमगा जितया सी। टीम एक बार फिर उसे राह ते चल रही है। ते हुण गल करदे हां IPL क्रिकेट दी। पिछले हफ्ते IPL दे मुकाबले बहुत ही दिलचस्प ते रोमांच भरपूर रहे। 26 अप्रैल नूं CSK ते गुजरात टाइटन्स दा जिहड़ा मुकाबला होया, गुजरात टाइटन्स ने एक तरफा मुकाबला करदियां CSK नूं 8 विकटां दे नाल हराया। कारण यह सी कि कगिसो रिबाडा ने शानदार ते घातक गेंदबाजी की थी, जिस करके उन्हां नूं प्लेयर ऑफ द मैच ऐलानिया गया। 26 अप्रैल नूं कोलकाता नाइट राइडर्स ते लखनऊ सुपर जायंट्स दे दरमियान बहुत ही कमाल दा मुकाबला होया। 20 ओवरां की समाप्ति तो बाद दोवां टीमां दे स्कोर बराबर रहे ते मुकाबला सुपर ओवर विच चला गया। सुपर ओवर विच सुनील नारायण ने कमाल दी गेंदबाजी की, 1 ओवर च 2 विकटां हासिल कीतियां ते सिर्फ 1 दौड़ दित्ती। उस तो बाद रिंकू सिंह ने बल्लेबाजी करदिया अपनी टीम नूं जित दवाई। 27 अप्रैल का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान सी, जिसनों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 9 विकटां नाल इस करके जितया क्योंकि जॉश हेजलवुड की गेंदबाजी ने दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों के पैर नहीं लगन दिते। 28 अप्रैल नूं मुकाबला सी पंजाब किंग्स 11 का ते राजस्थान रॉयल्स के दरमियान। पंजाब ने पहला बल्लेबाजी करदे 222 दौड़ों का टीचा राजस्थान रॉयल्स नूं दिता सी ते राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकटां नाल मुकाबला जित लिया। इस IPL मुकाबले विच पंजाब दी ये पहली हार सी। 29 अप्रैल का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ते मुंबई इंडियंस के दरमियान सी, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकटां नाल जितया। मुंबई इंडियंस ने 249 दौड़ां बनाईयां सन ते सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकटां गवा के यह टीचा पूरा कर लिया सी। 30 अप्रैल नूं गुजरात टाइटन्स ते रॉयल चैलेंजर बेंगलुरुज दे दरमियान होए मुकाबले च शुभमन गिल दियां 43 दौड़ां सदका गुजरात टाइटन्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु तों यह मुकाबला 4 विकटां दे नाल जित्तिया। ते कल जिहड़ा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ते दिल्ली कैपिटल्स दे दरमियान होया, दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकटां नाल मुकाबला जित्तिया। 226 दौड़ां दा टीचा सिर्फ 3 विकटां गवा के पूरा कीता गया।

0: ऐसा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदार्यो। ये कथन तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वालों उचारित है, जिस तों भाव है कि चौवां दिशावां दे विच उस अकाल पुरख दा बल आयद है ते सारी सृष्टि दे जीवां उपर उस दा कर भाव हथ भाव उस दी मेहर है। अपनी किरपा दे चक्षु खोल के उस सारी सृष्टि नू वाच रहा है, देख रहा है ते अपने प्यारियां दे दुखां नू हरदा है। अर्थात करता परता ते हरता खुद अकाल पुरख है। वो अपने प्यारियां दी रख्या करदा है, अपने प्यारियां नू कंठ नाल ला के उना दे औगण नहीं चितारदा। हर जन राखे गुर गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बखसंद। सरवण करदे आ भाई बलविंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।
1: हर

हरजन राखे गुरु गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बखसंद। आप जी सरवण कर रहे सौ भाई बलविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गाया होया ए शब्द। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1101 ते सुभाए मान मारू महला पंजवां सिरलेख अधीन उचारी गई बाणी दी एक पौड़ी विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि ओ अकाल पुरख परमेश्वर इच्छा पूरक है। उस पासों जो भी मैं मंगदा हाँ उही कुछ मैनू मिल जांदा है।

इस सुखा दा दाता ओ दातार प्रभु ही है, उही मेरा पिता है, उही सबना नू दाता प्रदान करदा है। ओस प्रभु ने ही मैनू रास भाव पूंजी अपना नाम तन सौंप दिता है, ते मैनू इस सौदे दा वणज करन दे लायक, इसनू विराजन दे लायक बना दिता है। मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक, ज्ञान रास नाम तन सौप्योन इस सौदे लायक। सरवण करदे आ भाई गुरमीत सिंह शांत अते उन्हां दे रागी जत्थे द्वारा गायन कीता होया ए शब्द।

0: सोई देवदा हर पिता सुखदायक। इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस पौड़ी की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलविंदर सिंह।
1: पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक औगन को ना चितारदा गल सेती लायक मुँह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सौंप्यौन इस सौदे लायक सांझी गुरनाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे ना विछड़ै हर पिता सबना गल्लां लायक। विचाराधीन ए पावन पवित्र अमृत बचन शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित पंचम गुरदेव साहिब गुरु अर्जन देव जी दे मुखारबिन तों राग मारू की वार अंदर पौड़ी दे रूप विच उचारण कीते हुए हन। सतगुरु जी इन्हां पावन बचना अंदर फरमाउंदे हन हे अकाल पुरख तू सारे जीवां दा पालनहार है तू मेरी माँ भी है पिता भी है मैं एक बालक वांगू सारियां लोड़ां तैथों मंग के पूरियां करदा हाँ तू मेरा कोई औगुण चितारदा नहीं तू मैनू उच्ची आत्मक अवस्था बख्शन वाला है मैं जो जो मूँह तो मंगदा हाँ तू पिता वांगू वो बख्शदा है ज्ञान दी दात नाम दी दात रूप सौदा तू मैनू लायक जान के बख्शिया है तुसी मेरी गुरु नाल सांझ कैम कर दित्ती है हे अकाल पुरख पिता तू सर्ब कला समर्थ है। विचार अधीन पौड़ी दे आरंभ विच सतगुरु जी बख्शिश करदे ते फरमाउंदे हन हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक भाव परमात्मा मेरी माँ है परमात्मा मेरा पिता है मापिया वांगू मैनू पालन वाला है प्रभु मेरी संभाल करदा है असी सारे प्रभु दे बच्चे हाँ। इस भाव नू सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने राग माज अंदर इस प्रकार उचारण कीता है तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता भौ के आ काढ़ा जियो। सतगुरु जी राग भैरों अंदर भी बख्शिश करते हैं तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जी प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हों दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। विचार अधीन शब्द दियां अगलियां पावन पंक्तियां हन सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक औगुण को ना चितारदा गल सेती लायक भाव मैनू मेरा हरी परमात्मा अडोल अवस्था विच टिका के जीवन खेड़ खिड़ा रहा है इस गल्लों रता भी आलस नहीं करदा मेरे किसे औगुण नू चेते नहीं रखदा मेरा दाता सदा मैनू अपने गल नाल लाई रखदा है। इस भाव दे पावन बचन सतगुरु जी तलंग राग अंदर भी बख्शदे हन मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान जी सगल को

ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो नेरे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई वरिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के

अर्थात पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच ती आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਵਤਨਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ।

मेरा साइकिल चोरी होया। अरे मूर्ख, साइकिल लेकर गाड़ी देगा तू क्या जाने मोया। मोया मतलब, मोया मतलब मर जाना, मान मर जाना, अभिमान वो भी मर जाना, इंसान मर जाना।

0: हां जी रुलिया राम जी।
1: संधू साहब, मच्छी पालना जिदा आपां सारे जानने आ कि हुण साडे रवायती खेती दे विचों निकलण दा इक्को ही तरीका है कि असीं किते धंदियां दे वल आईए। और किते धंदे खेती दे नाल रल गड किते धंदे मेरा ख्याल है जिन्ने है ते होर किसी काम दे विच नहीं हो सकते।
0: हाँ बहुत वधिया जी। देखो जे बार बार आपां गल करदे हुंने आ वी रोजाना दी आमदन जिहड़ी है ना इहदा वसीला होना चाहिए।
1: बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी
0: कि हुण ओह समां नहीं भी छे महीने उड़ीकदे रहो।
1: हाँ बैठे रहो हाथ हाथ धर के।
0: हाँ जी। सो इस करके जे काम चाहे छोटे पद्धर ते भी होण तां कर सकदे हैगे आ।
1: कर सकदे आ जी। देखो ये तां ऐसियां चीज़ां संधू साहब जिदा मच्छी पालन है, मक्खी पालन है ना, पिगरी है, बकरियां पालन दा तां हुण काम बहुत जिहड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। इन्हां लई सरकारां वल्लों इमदाद भी कीती जांदी है, ट्रेनिंगां दीआं सहूलतां भी है, बहुत सारे मतलब पक्खां दे उत्ते मदद है।
0: हाँ बहुत सहूलतां ने जी, खास करके आ जिहड़ी आपणा गल करीए ना मच्छी पालन।
1: हाँ
0: ते इहदे नाल तां इन्ना आप कई लोग ना उह ला लैंदे आ जी, आपणा सूर ऊर्जा वाला काम भी ला लैंदे आ,
1: लगदा लगदा
0: बड़ा काम आउंदा है,
1: काम आउंदा है। सो ये मच्छी पालन की महत्ता के बाबत डॉक्टर शुभवंत कौर होरां कोल जानकारियां सांझियां कीतियां, आपां सांझे करदे
2: आं। अज दा साडा चर्चा दा विषय है मच्छी पालन की महत्वता। पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है, परंतु अज दे समें विच दिनों दिन घट रहा जमीन हेठला पानी दा पद्धर, फसलां दी पैदावार लई वध रहे खर्चे अते रसायनिक खादा ते कीटनाशकां दी लोड़ तो वध वरतों दे कारण जमीन दी सेहत खराब हो रही है अते एक चिंता दा विषय बन गई है। इस करके किसानां नूं हुण कणक ते झोने दे रवायती फसलां दे चक्कर विचों निकल के सहायक धंदियां नूं अपनाउण बारे सोचना चाहीदा है। खेतीबाड़ी नाल जुड़े सहायक धंदियां विचों मच्छी पालन एक सब तो वधिया अते लाहेवंद धंदा साबित होया है। जे इस नूं सही ढंग नाल अपनाया जावे तां इह एक पासे तां लोकां नूं ताकत वाला भोजन दे रहा है अते दूसरे पासे आमदन दा एक बहुत ही सुचज्जा साधन बन के उभर के आया है। बेरोज़गारां नूं रोज़गार भी मुहैया हो रहा है। हुण असीं पहलां गल करदे हाँ कि आपां मच्छी पालन क्यों करिए। मच्छी पालन करन दे बहुत सारे कारण ने, जिवें कि थोड़ी मेहनत करके चंगा मुनाफा कमाया जा सकता है, स्वै रोज़गार दा एक बहुत ही वधिया साधन है, चंगी सेहत लई संतुलित आहार है, कणक ते झोने नालों पानी दी घट लोड़ है, प्रदूषण रहित वातावरण रहिंदा इहदे नाल, इहदी मंडीकरण दी कोई चिंता नहीं है अते जमीन दी सेहत दे विच वी बहुत सुधार हुंदा है। हुण असीं गल करांगे मच्छी पालन दे फायदियां दी। सब तो पहला तो यह आमदन का एक बहुत ही वधिया साधन है। जे विज्ञानिक अते तकनीकी ढंग दे नाल मच्छी पालन किया जाए तो किसान एक एकड़ रकबे जमीन विच्चों घट्टो घट 2.5 टन मच्छी की प्रोडक्शन जिहड़ी है वह पहले साल कर सकता है अते 1 to 1.25 lakh rupees तक की मुनाफे की उसनू मतलब निकोर मुनाफा जड़ा है वो एक एकड़ चो मिल जाता है। यह स्वै रोज़गार का एक बहुत वधिया साधन है अते परिवारिक मैंबरां नू भी इसे नाल काम मुहैया करवाया जा सकता है। दूजा है आपां मच्छी पालन नू इंटीग्रेट करते हैं, बतक पालन नाल मुर्गी पालन, सूर पालन, बागबाणी, खेतीबाड़ी अते सब्जियां दी खेती करके पशु पालन इत्यादि भी आपां जड़ा है ओ मच्छी पालन दे नाल कर सकते हैं। ते ए इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग जिहड़ी होर कित्तियां नाल सुमेल जड़ा है ओ बहुत लाहेवंद साबित हुंदा है, क्योंकि जिहड़ियां मुर्गियां दीआं बिट्ठां हन, सूरां दा मल मूत्र है, बतकां दीआं बिट्ठां हन, पशुआं दा गोहा है, यह मच्छी तालाब दे विच वरत्या जांदा है अते यह मच्छी दी खुराक दे खर्चे नूं तकरीबन अद्धे तो वध घटा दिंदा है। जैविक रहिंद खुंद दी वरतों जे मच्छी तालाबां विच फीड वजों कीती जांदी है।

कि मच्छी दी खपत, ते मच्छी जेड़ी हैगी है वो एक पौष्टिक आहार है। एदे विच बहुत सारे तत् ने जिदा विटामिन ए बी डी ई के ते फिर कैल्शियम फॉसफोरस आयोडीन, ये सारे जड़े तत् ने ये मच्छी दे विचों सानू मिलते हैं। अखां दी रोशनी लई मच्छी बहुत वधिया है, दिमाग दी बीमारियां इहदे नाल नहीं लगदियां, मानसिक शांति रहिंदी है। चन्ना किस्म दी मच्छी आंदी है, चन्ना मरियूलियस आंदी है, ये दमे दे मरीजां दी दवाई बनाउण दे विच इस्तेमाल की जाती है। इस तों इलावा बहुत सारी समुद्री मच्छियां ने जिदा मैकरल से सैडाइनज आंदियां ने, ये तुहाडियां आंतड़ियां दे कैंसर दी जिहड़ी हैगी है दवाई उहदे विच इस्तेमाल हुंदी है। सो ओवरऑल देखिया जावे ते मच्छी दे पौष्टिक तत्तां करके मच्छी दा पालन जिहड़ा है वह अजकल अपनी होंद जिहड़ी है वह विकसित कर रहे हैं। बाकी पंजाब सरकार जिहड़ी है भारत सरकार दे नाल रल के बहुत सारे इहो जिहे उपराले कर रही है कि लोगों नूं इस किते बारे ज़्यादा जागरूकता मिले अते लोग वध तों वध इस किते नूं अपनाउण लई सामने आउण। भारत सरकार अते पंजाब सरकार ने साल 2021 विच प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नामक एक स्कीम शुरू की सी। यह स्कीम 5 साल लई लागू हुई है 2025 तक, लेकिन हुण इस साल इस स्कीम नूं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नूं 1 साल का एक्सटेंशन होर मिल गया। इस स्कीम के अंतर्गत मच्छी पालन नाल जुड़े हुए हर वर्ग के व्यक्ति ने लाभ जड़ा है वह उठाया है, क्योंकि इस विच सबसिडी जड़ी है 40% सबसिडी जनरल कैटेगरी नूं अते 60% सबसिडी जड़ी है वो SC ST अते वुमन कैटेगरी नूं दित्ती गई है। ते जिन्ने भी चाहवान मच्छी पालक ने वो सबसिडी दे रूप विच आर्थिक सहायता लैण लई PMMSY दे बहुत सारे जड़े प्रावधान ने उन्हां दा फायदा चुक चुके हन। बैंकां तों तुहानूं आसान किश्तां ते करजे भी दवाए जांदे हन। हुण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दे विच सब तों पहलां जे तुसीं पटाई करदे हो घट्टो घट 1 किले दा जिहड़ा छप्पड़ है वह होना चाहीदा है। 2.5 किलियां दा छप्पड़ 1 हैक्टेयर 1 यूनिट मन के आपां चलदे हाँ, इहदे विच टोटल 11 लाख की लागत आती है जे तुसीं अपना मच्छी तालाब बनाउंदे हो। उहनूं उन्हां ने डिवाइड किया है कि 7 लाख उहदी कैपीटल कॉस्ट है ते 4 लाख इनपुट कॉस्ट है। हुण कैपीटल कॉस्ट विच की आंदा है कि 3 लाख दा खर्चा अनुमानित खर्चा हैगा 2.5 किले दे पौंड नूं पुट्टन दा, पटाई करन दा, उहदे बन बनाउण दा, उहदी लैवलिंग करन दा। जे तुसीं ट्यूबवैल लवांदे हो उत्थे पानी ते चाहीदा ही है, क्योंकि मच्छी एक पानी च पलण वाला जीव है अते उहनूं साफ पानी दी लोड़ है, ते उहदे लई तुहाडे कोल पानी दा साधन तां होणा चाहीदा। ट्यूबवैल लई भी 2 लाख दा अनुमानित खर्चा है। फिर तुसी फीड स्टोर करनी है, उहदे वास्ते एक कमरा बनाओगे तुसी 50,000 उहदा खर्चा है। एरेटर लाओगे 1,40,000 दे 4 एरेटर लगने हैं, 35,000 दा 1 एरेटर हुंदा है, है ना। ते बाकी तुसी मिसलेनियस खर्चे 10,000 ने जिहदे विच तुसी बार्बड वायर ला सकदे हो, बोर्ड ला सकदे हो, कोई गेट ला सकदे हो अपने पौंड दा। ते ए सारा 7 लाख दा जिहड़ा कैपीटल कॉस्ट है इहदी 40% जनरल कैटेगरी नूं ते 60% ST ST SC ST या वूमेन कैटेगरी नूं जिहड़ी है वह दित्ती जांदी है। 4 लाख इनपुट कॉस्ट है, इहदे विच तुहानूं मच्छी दा बीज जिहनूं आपां सीड कहिंदे आ, मच्छी दा पूंग 2,500 रुपया उहदा, मच्छी दी खुराक 3 लाख, फिर चूना होर कोई आपां लाल दवाई या कुछ यूज़ करते हैं उहदे विच 20,000 उहदा है। बाकी इलैक्ट्रिसिटी, बाकी जे तुसीं बंदा रखदे हो कोई उत्थे अपना सेवादार या काम करन लई, उहदा 77,500 उहदा है। ते इह सबसिडी जिहड़ी है इह 1 वार ही किसान वीर नूं दित्ती जांदी है, पहले साल काम शुरू करके उहनूं प्रॉपर कंप्लीट करन तों बाद, प्रॉपर पौंड दी उसारी तों बाद, पूंग छड्डन तों बाद। हुण मच्छी पालन दे विच जिहड़ी हुण पूंग दी गल आपां करदे हां, तां साडे पंजाब दे विच 14 सरकारी नर्सरियां ने, फिश सीड हैचरीज ने, जिन्हां ते तुहानूं सबसिडाइज्ड रेट ते मच्छी दा पूंग मिलदा है। 100 रुपए दा 1,000 बच्चा जिहड़ा है मच्छी दा उह तुहानूं मिलदा है। 6 किस्म दी वरायटियां ने, कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर काप, ग्रास काप ते कॉमन काप। मार्च मिड तों सीड मिलना शुरू हो जाता है, तो अगस्त एंड ते सितंबर के पहले हफ्ते तक तुहानूं जिहड़ा सीड है वह मिलता है। तो 1 एकड़ रकबे दे विच आपां 6,000 सीड फिंगरलिंग सीड जिहड़ा है वह एडवाइस करते हैं फार्मर नूं पाउण दे लई। हुण इह आपां गल कीती है जिहड़ी साडी रिवायती तरीका हैगा मच्छी पालन दा, कि तुसीं टोभा पुट रहे हो, है ना, उहदे विच तुसीं मच्छी जिहड़ी है वह छड रहे हो। हुण अजकल बहुत सारे इंटेंसिव कल्चर आ गए ने, इंटेंसिव मतलब टोटली कंट्रोल्ड कंडीशन दे विच, मतलब तुसीं उस मच्छी नूं एक आर्टिफिशियल इनवायरमेंट दे के ग्रो करते हो। इहदे विच मेन फायदा की है कि तुहानूं घट जगह की लोड़ है, घट पानी की लोड़ है, तो

0: की गल, जीती नजर नहीं आंदी, आई नहीं दफ्तरों?
1: आ गई है, अंदर लेटी हुई है।
0: लेटी हुई है, की गल हुई है?
1: होना की है, कुछ नहीं, थक गई होनी है बेचारी।
0: साड़ी जीती थी नहीं, वो था पुत्रा वांग ही पुत्रा वांग।
1: ओ ता है।
0: सारे घर दे खर्चे दा भार मेरी धी ने चुकया है, हौली हौली कर्जा भी लुआ दोगी।
1: और दफा होना जिदे वास्ते कर्जा लिया सी, ओ ता व्याह करवा के आड़ी होके बह गया, ते कर्जा उतारनू रह गई मेरी धी।
0: वड्डे मुंडे दी गल ही ना कर मेरे सामने, एहो जे पुत नालों पत्थर जम लैंदी, चक्की दा पुड़ ता बन जांदा।
1: हुण की है, हुण भी तो पत्थर ही है, केड़ा उहदे दिल च कोई दर्द है किसे लई।
0: छड खेड़ा, जिउंदी रहे कुड़ी साडी, जा उहनू चाह पाणी पुछ के आ।
1: हां हां, चलियां चलियां पुछण। जीती जीती, की गल पुत, आज जदों दी आई है तू बाहर ही नहीं निकली।
2: कुछ नहीं मां।
1: नहीं, तेरा बापू चिंता करदा सी पुत, उसे ने ते कल्या ही आके पुछ के आ उन्नू की गल है। नहीं तू ठीक ते है?
2: ठीक हाँ मां, बस सिर बहुत दुख रहा, इंच लगता पार्टी जाएगा।
1: हाय मैं मर जावा, हाय मैं सदके जावा, हो रिया पूरा सिर कर लिया, मैं कुट दिया। सारा दिन काम करती रहनी है ना, ता ही तो सिर ते तेरे वजन पे है।
2: पहला तो कदे इंच नहीं होया मां, अज तो ए लगता जिवें सिर अंदरों फट के कुछ बाहर ही आ जाएगा।
1: नहीं मैं तेरे बापू नूं कहां कोई गोली लिया के देवे।
2: नहीं रहन दे मां, रहन दे, बस कुट कु चाह बना दे।
1: हाँ मैं हुणे आई, बस हुणे लेके आई वो, तो मैं हुणे आनी आ।
2: हाय हाय हाय मां, मां हाय हाय मां, हाय बस मेरे सिर चकरा रहे हैं मां, मैं गई। हाय मां,
1: हाय मैं मर जाऊं, हाय की होया मेरे धी नूं, जीती दे बापू, जीती दे बापू, हाय मेरी जीती गई जे।
0: ओ की होया मेरी जीती, ओ की होया मेरी जीती नूं, हाय है।

0: निपुण कर्म करन वाली सी ए रू मैं ता सोचदी सी कि मैं अपनी बीबो नू भी एदे कोल ही पढ़न भेज दूंगी। कहिंदी भी सी चाची तुसी एदा फिकर ना करो। मैं भी सोचदी सी किन्ना चंगा होवे जे किते मेरी बीबो भी एदे वांग पढ़ ले के किसे चंगे टिकाने लग जावे, मेरे भी टब्बर दे खर्च दा संसा मुके। पर रब चंद्रे ने सारियां उम्मीदां ते पानी फेर दिता।
1: हाय की करिए की करिए, जा वड्डे रब ने ता किसे जन्म दा वैर कढ़िया। हाय ती मेरी सारा दिन कोल्लू दे बैल वांगू काम विच जुटी रहिंदी सी, जिवे हिसाब किताब भी पूरा करदी होवे।
2: भैण जी मैं ते वेख्या जदों नौकरी तो छुट्टी आना एडे एडे लफाफे नी किसे च बूट किसे च सूट किसे च फरूट।
1: तुर गए तुर गए सब मेरी ती दे नाल ही तुर गए। मेरा भरा हाय हाय नी ओदा भरा रोंदा, आखे मेनू नवीं नवीं कमीजा कौन लेके देगा। हाय मेरी धी ने मोटरसाइकिल दा वादा कीता भरा दे नाल। सबर करो होनी नू जरो कुछ नहीं जे हो सकता।
0: ए प्यो पुत किथे गए ने हुण?
1: हाय गए ने संस्कार दा प्रबंध करदे फिरदे ने, किथे दे घर दा बंदोबस्त करना सी किथे आ करना पै गया।
0: हाय आहो भैण वदी नू सौ टोटक जांदे ने पर कटी दा कोई इलाज नहीं, इत्थे सब चारा जोरियां व्यर्थ।
1: प्यो ते भरा ता जान छिड़कदे सी इहदे ते, मुंडे दी पढ़ाई दा खर्चा किताबां कपड़े तोरा

0: हो गया सारा प्रबंध। डॉक्टर कहिंदा कुछ पैसे लगनगे, मैं लिख के दे दियांगा, तुसी फिकर ना करो।
1: चलो चार पैसे लग के भी जे मसला हल हो जाए तो सौदा महंगा नहीं जे, बंदा कुत्त खाने तो बच जाता है ते चार पैसे भी हाथ लग जाते ने।
0: मैं संस्कार का इंतजाम कर आया, लोग कहंदे ने दे ज्यादा देर नहीं रखी दे।
2: मैं जिंदी हुई भी एक शरीर मात्र सा, मोई हुई भी एक शरीर ही हूं। मेरे जीवन ते मरण च की फर्क है।
0: बड़ी लाहिक सी, ऐतकी महकमे का इम्तहान पास कर गई सी, अगले साल तरक्की हो जानी सी, 5 साल भी साढ़े कोल होर कट जांदी तां घटो घट 10 लाख तनखाह चो बचा के दे देंदी। एडी सियाणी सी, असी तां इंज जापदा इहदे बगैर यतीम हो गए।
3: बापू मैं जीती दीदी वाला मोबाइल ले लवां।
4: सिर च मारना ही अंतरिया, तू
3: रिश्तेदारां नूं फोन नहीं करने, हर वेले मेरे ही गड़ पे रहा करो, जिवें जिवें फोन में आप रंगना होवे।
0: कट लै काका परस चों, इहदी तां आदत बोली जाण दी।
2: मेरे जींदे वी इह परस नूं तांदा रहिंदा सी, हुण मोही तो ता छिक्का ही टुट गया। दिल करता है उठ जावा पर उठन दी ताकत च ही नहीं रही।
5: बीबी पैण तू हुण रोई ना, तेनू देख के काका भी रो पेगा। सब नू हौसला दे, मैं चलदी हां, सवेरे आवांगी। संस्कार ते सवेरे करोगे ना?
0: हाँ सवेरे सजरे ही कर देंगे, कहंदे ने मोए शरीर नू बहुत ही देर नहीं रखी दा।
2: बापू वाह, मोए शरीर नू बहुत ही देर नहीं रखी दा, कुड़िया नू भी बहुत ही देर नहीं रखी दा। मैनू तुसी जीउंदी नू इन्नी देर कीवें रख दिया?
0: रब ने बहुत माड़ी कीती है, जद भी गल तोरी दी सी व्याह नू नाह कर देंदी सी, मैं भी चुप कर जांदा सी। मैं क्या चलो करदा कर।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया देश पराया।
1: होया देश पराया, हो, होया देश पराया, होया देश पराया।
0: कल दा प्रोग्राम बच्चों इस तरह सवेरे 6:30 बजे ते खेतीबाड़ी प्रोग्राम च सौनी ली मक्की दी काश्तकारी दे बाबत कुछ जानकारियां सांझियां करांगे
2: जी।
0: शामां नूं 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी योर आरजे चेतन। थकान, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम, एक ऐसा विकार है जिसका कारण अभी तक अज्ञातिक नहीं है। हालांकि यह पहले की किसी संक्रमण से संबंधित हो सकता है। थकान ऐसी स्थिति है जो चाहे महीने या इसमें अधिक समय के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के मौजूद रहती है और याददाश्त संबंधी या एकाग्रता संबंधी समस्याओं के साथ होती है। थकान के जोखिम कारक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अधिकांश 40 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को होती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में करीब 4 गुना अधिक होती है। थकान का निदान 5 से 6 लक्षण के निदान से होते हैं। इसका अपना कोई निश्चित परीक्षण नहीं होता है, इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इसके लक्षण का उपचार किया जा सकता है और इससे ग्रस्त लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की सलाह दी जाती है। भारत में क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम हजारों लोगों को प्रभावित करता है। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक प्रचलित है। एक भारतीय अध्ययन के मुताबिक 12% भारतीय महिलाओं को क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम होने का अनुमान लगाया गया है। ये सिंड्रोम शुरू होने की औसत उम्र 30 से 40 वर्ष है। ये कम आयु वर्ग के लोगों में अधिक आम है। इसके लक्षण प्रतिदिन बदल सकते हैं और उनका आना जाना हो सकता है। थकान के बहुत लक्षण होते हैं, लेकिन हर किसी को प्रभावित करने वाले कुछ लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए आरजे चेतन को। तो पहला लक्षण है दोस्तों, अत्यधिक शारीरिक थकान, मानसिक थकान या दोनों। यह स्थिर हो सकते हैं या बार बार इनका आना जाना भी हो सकता है। यह आराम से ठीक नहीं होता। थकान इतनी गंभीर भी हो सकती है कि यह आपको दिनचर्या के काम और सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे। कुछ काम करने के बाद अस्वस्थ महसूस करना, नींद की समस्याएं, अलग अलग या एक जगह दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों

का दर्द, सर दर्द, एकाग्रता, याददाश्त की समस्या या सही शब्द सोच पाने में समस्या, प्रकाश, शोर या भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होना, भ्रम, सोचने की क्षमता में विलंब या गुमराह महसूस करना, मांसपेशियों की कमजोरी या समन्वय की समस्या। थकान के अलग अलग लोगों में विभिन्न लक्षणों के संयोजन होते हैं, जैसे चक्कर आना, दिल की धड़कन में तेजी या काम करते समय सांस लेने में तकलीफ, ज्यादा पेशाब आना, मतली या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, शरीर के तापमान में गिरावट, हाथों का ठंडा होना और पैरों में पसीना आना, तनाव के दौरान बुरा महसूस करना, वजन में या भूख लगने में बदलाव। थकान के साथ अवसाद होना आम है और इससे थकान के लक्षण बेहतर हो सकते हैं। थकान से ऐसे लक्षण होते हैं जो अन्य बीमारियों के समान है, विशेष रूप से शुरुआती दिनों में। सालों के अध्ययन के बाद भी थकान का कोई ज्ञात कारण आज तक शोधकर्ताओं को नहीं मिल पाया है। हालांकि लोगों में थकान के साथ कई बीमारियां देखी गई है, लेकिन इसके विकास के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रोग नियंत्रण केंद्र CDC से पता चला है कि शोधकर्ता अभी भी थकान के कारणों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्ययन किए गए कुछ कारकों में शामिल है वायरल संक्रमण। कुछ लोगों को वायरल संक्रमण होने के बाद थकान होती है, इसीलिए शोधकर्ता इसे भी उन कारकों में से मानते हैं जिससे थकान हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि एप्स्टीन-बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस, माउस ल्यूकेमिया वायरस थकान के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। थकान से ग्रस्त लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कारण थकान होने के लिए पर्याप्त हो गई है। थकान से ग्रस्त लोगों को कभी कभी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि में उत्पन्न हार्मोन के असामान्य रक्त स्तरों का अनुभव होता है, लेकिन इन असमानताओं का कारण अभी अज्ञात है। थकान के जोखिम को बढ़ाने के कारक अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए RJ चेतन को। पहला है आयु। थकान किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह सबसे सामान्य रूप से 40 और 50 की उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थकान ज्यादा होती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि महिलाएं अपने लक्षणों के लिए डॉक्टर के पास अधिक जाती है। तनाव के कारण भी थकान हो सकती है। वर्तमान में थकान के स्पष्ट करना ज्ञात न होने के कारण इसकी रोकथाम के तरीके भी नहीं मिल पाए हैं। हालांकि चिकित्सक ऐसे बचने के लिए कुछ जीवन शैली व बदलाव करने के सुझाव देते हैं, जैसे तनाव को कम करें, अत्यावश्यकता और भावनात्मक तनाव से बचने या उसे सीमित करने की योजना बनाएं, प्रत्येक दिन में कुछ समय आराम करें, प्रत्येक दिन एक ही समय पर सोए व उठे और कैफीन, शराब, निकोटिन न लेने का प्रयास करें। अपनी गतिविधियों का एक स्तर बनाए रखें। बहुत अधिक गतिविधियों के कारक आपको थकान हो सकती है। थकान का निदान करने के लिए कोई परीक्षण नहीं है। इसका निदान करने से पहले आपके डॉक्टर कई अन्य बीमारियों का परीक्षण करेंगे, जैसे नींद के परीक्षण ये निर्धारित कर सकते हैं कि बाकी विकारों जैसे स्लीप एपनिया, पैरों में बेचैनी महसूस होना या अनिद्रा के कारण अपनी नींद में समस्या तो नहीं आ रही है। थकान कई चिकित्सा स्थितियों में एक सामान्य लक्षण होता है, जैसे कि एनीमिया, मधुमेह और हाइपोथायरॉयडिज्म। थकान कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि अवसाद, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण है। एक सलाहकार यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या इनसे किसी एक समस्या से आपको थकान हो रही है। जैसे थकावट के अन्य कारणों को हटकर परीक्षण करने के लिए टेस्ट, थायराइड, एड्रेनल ग्रंथि और लीवर के टेस्ट का उपयोग उन विकारों को हटाने के लिए किया जा सकता है जो थकान का कारण हो सकते हैं। थकान से ग्रस्त लोगों में इन परीक्षणों को परिणाम सामान्य होना चाहिए। थकान से ग्रस्त लोगों के लिए सबसे तर्कयुक्त परीक्षण है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो सूजन की अनुपस्थिति को दिखाता है। यदि ESR उच्च या सामान्य श्रेणी से ज्यादा है तो एक अन्य निदान की आवश्यकता हो सकती है। अगर रक्त परीक्षणों में कोई अन्य असामान्यताएं आती है तो आपके डॉक्टर दूसरी परिस्थितियों के लिए परीक्षण शुरू कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको पहले कोई संक्रमण हुआ था या नहीं ये देखने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण करवा सकते हैं।

सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा परिश्रम से बचे। जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो ज्यादा परिश्रम करने से थकान से ग्रस्त लोगों को फिर से अस्वस्थ महसूस हो सकता है। तनाव को कम करें। तनाव में रहने से ऊर्जा में कमी आ सकती है और थकान हो सकती है। मोटापा के कारण भी थकान हो सकता है, इसीलिए इसे संतुलन में रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। वेल डियर फ्रेंड्स, दैट वाज अबाउट फटीग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन अस एंड हाउ टू अवॉइड इट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस प्रोग्राम ऑफ लम्हे विद योर आरजे चेतन। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सब

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਰਿਤਾ ਚ।

0: प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
2: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 852,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
3: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज C.DOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C.DOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
5: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है।

0: अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
1: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 390,000 गणना ब्लॉक बने।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Nearly 90% voter turnout recorded in repolling at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Counting of votes on Monday for assembly polls in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and Puducherry. Election Commission deploys additional counting observers and police observers in West Bengal. Government launches cell broadcast system to strengthen India's emergency communication system.

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग दे कॉन्सर्ट दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदिताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता। दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बी एस प्रशांत, घटम बाय जी ओमकार राव। कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस, सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट ललिते, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन भैरवी रागा सेट टू आदिताल।

0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was तानी आवर्तनम presented on मृदंगम by बी एस प्रशांत and on घटम by जी ओंकार राव।
0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: Sindhu Suchetan and H.M. Smita will conclude their violin duet recital with Thillana in Raag Desh, a composition of Vidwan Lalgudi Jayaraman.

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता का वायलिन युगल वादन संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर बीएस प्रशांत तथा घटम पर जी ओंकार राव।
1: विद दैट वी कंक्लूड वायलिन डुएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। दे वर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बीएस प्रशांत एंड ऑन घटम बाय जी ओंकार राव।
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली के
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में

0: वेस्ट नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड्स और
1: डिटेल्स दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा जलंधर केंद्र तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब पंजाबी दी आवाज। मैं तुहाडा दोस्त हमदम पारस चड्डा लैके हाजिर हो चुका है प्रोग्राम सौगात। जी हाँ, 11:10 हो चुके ने, सौगात प्रोग्राम थोड़े को पहुँच चुका है जी। और जो हर वार हर शनिवार तुहानू इंतज़ार हुंदा है तुहाडियां फरमाइशां दा, गाणियां दा, गीतां दा, उस चीज़ां नू पूरा करन लई, उस जिहड़ी फरमाइश है और जिहड़ी खास सौगात तुसीं साडे लई प्रोग्राम च लैके आउंदे हो, उहदी फरमाइश पूर्ण करन दा टाइम आ चुका है। नंबर तुसीं जाणदे हो 0181-3443-171 नंबर मिला के तुसीं अपने दोस्त पारस तक पहुँच सकदे हो। इंतज़ार बस तुहाडी कॉल्स दा है।

0: करता है तैनू महर दया एक तुड़का प्यार दा
1: करता है तैनू महर दया एक तुड़का।
2: लो जी नंबर ला के दो साढ़े को पहुंच के नहीं आओ गलबात करते हैं। हैलो
3: जी सत श्री अकाल सर जी।
2: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
3: रमेश कुमार जाजोरी नगर।
2: रमेश कुमार जाजोरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम सौगात दे विच।
3: धन्यवाद जी साहब जी।
2: होर सुनाओ, घर परिवार ऑल गुड?
3: हाँ सब ठीक है, ऑल बेस्ट है।
2: चलो ऑल गुड ही चाहिए। तो आज की खास सौगात साढ़े लिए लेके आए हो?
3: सर मच्छरदानी ले मच्छर ने खा लिया तोड़ के सुना दे।
2: ठीक है जी, मच्छरां तो अपना ते अपनी फैमिली दा फिर पूरा एन रख रखाव कर रहे हो ना?
3: बिल्कुल रखने है जी।
2: ठीक है जी, मच्छर ते तुसी गाना लवाता तुहाडी पसंद तुहाडे तक पहुंच रही है, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
3: शुक्रिया साहब जी।

ना जी, अगली चिट्ठी पुरानी मंडी मुलापुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, गौतम जैन, गीना जैन, मुलापुर डाका मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, मिट्टू जैन, टीटू जैन ते उन्हों का पूरा जैन परिवार, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी तो द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा ते उन्हों का पूरा वर्मा परिवार, गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल बेबी हनीशा ते उन्हों का पूरा परिवार सानू प्यार भेज रहा है। अगली चिट्ठी की गल करिए गाँव हरिपुरा बोहर पंजाब तो महेंद्र बिश्नोई, वेद प्रकाश बिश्नोई, अमित बिश्नोई, अजय ते ज्ञान बिश्नोई होना ने सानू याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया इन्ने प्यार नाल चिट्ठी भेजने वास्ते। पटेल नगर मलोड़ तो रमेश कुमार जाजोरिया, कीता राणी जाजोरिया, गगनदीप बेबी वारजू ते उन्हों का बहुत प्यार भी चिट्ठी सानू मिल गई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली चिट्ठी की गल करिए जी, भेजन वाले दोस्त ने पिंड हाजमवाला तरसीत फाजिलका तो सोहन सिंह बुक, निशान सिंह बुक, सीरत कौर, कीरत कौर, दादी जसवंत कौर होना ने सानू याद किया। लिखते हैं मास्टर सलीम की आवाज़ से कोई भी गीत सुना दो। बिल्कुल जी, थोड़ी पसंद तक पहुँच रही है।

इस प्रोग्राम में इतनी ख़त्म करने दो इजाज़त, अगले शनिवार ठीक 11:10 में लैके हाजिर हो जाएगा प्रोग्राम सौगात। तो सी जाना किसी नहीं क्योंकि यह सफर इदा ही चलता रहना। इस तो बाद ठीक पंजाबी नाटक म्यूजिकल फीचर और पंजाबी ड्यूड म्यूजिक तुहाडे लई लैके असीं हाजिर हो जाणा। इस प्रोग्राम में इतनी ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम।

0: नर्स, कुछ पता चले?
1: नहीं इंस्पेक्टर, मैं हर तरह ट्राई कर चुकी हाँ पर वो बोल दे नहीं।
0: साडा विचार सी कि इस हस्पताल विच तुहाडी सेवा तो खुश होके तुम सब कुछ दस देगा।
1: सारियां गल्लां कीतियां उसने पर बिजनेस बारे एक शब्द नहीं कढ़िया मूँह।
0: बड़ी चालू चीज़ है, इनकम टैक्स वालिया नाल असी इहदे फ्लैट दफ्तर ते बैंक दी तलाशी लै चुके हाँ पर इहदे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलिया।
1: छापा तो सर तुसी इहदे पार्टनर विमल नंद भी मारिया सी।
0: उह तां धूमल दा भी पिओ है, उत्थों भी कुछ नहीं मिलिया। उहदी चलाकी तां इन्नी है कि इह अपने भाईवाल धूमल दा भी हिस्सा हजम कर गया। ऐसे सदमे कारण धूमल नूं हार्ट अटैक हो गया। हुण की हाल है उहदा?
1: ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।
0: ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
1: ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਧੂਮਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 30-32 ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ?
0: ਬੀਬੀ, ਪੈਸਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਰਸ, ਹੁਣ ਧੂਮਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ?
1: ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ।
0: ਠੀਕ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ।
2: ਕਿਸ ਨੂੰ?

0: तेरा कहना है कि विमल चंद का मुनीम भी नहीं जानता?
1: हाँ मालको, ओदा ख्याल है कि कागज़ विमल चंद ने घर च ही कित छुपाए हुए है।
0: लगता तो मैनू भी यह होए। अच्छा, विमल चंद के नौकर गिरदारी नू तो तू जानता ही है?
1: जी हाँ, मिलिया भी मैं उसनू, पर मालको ओ कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता।
0: पर किसनू वो कागज़ तो मैनू हर हालत चाहिए ने। उन्हां कागज़ों तो बगैर तो मैं कौड़ी का भी नहीं, ना मैं अपना हिस्सा मंग सकता ते ना बदला ले सकता।
1: ओ मैं तो कहना मालको, तुसी उन्हूं भुल ही जाओ, ओदे कारण ही तो तुसी मरदे मरदे बचे हो।
0: ना किसनू, कागज़ तो मेरी मौत का वरंट बने हुए ने। बिमल चंद की घरवाली किरण का प्रेमी अशोक जानता ना, जा बुला के लिया उन्हूं।
1: अच्छा मालको, हुणे जाना।
0: तैनूं दसा, ये अशोक भी विमल तो सड़िया बैठा। किरण अशोक दी ही प्रेमिका सी, उन्हूं भी इस कमीने ने पैसों का लालच दे के फसा लिया।
1: अच्छा, इन्ना गिरिया है?
0: हाँ, जा तू जिथे भी भावें पताल च होवे अशोक नूं लैके आ।
1: जरूर जरूर मालको, हुणे लैके आउणा उन्हूं मैं।

0: मालको मालको अनर्थ हो गया जे।
1: की होया किसनू? अशोक मिलया?
0: वो मिलते गया सी पर आंदे आंदे ओदा एक्सीडेंट हो गया।
1: मर गया?
0: हाँ मालको।
2: ओए ओए ओए मार सुटिया है अशोकिया, मार सुटिया है।
0: ओए ओ फिर दौरा पै गया। सिस्टर सिस्टर
3: की होया?
0: आ देखो मालकन फिर दौरा पै गया जे, वो बेहोश हो गए जे, वो इन्ना दी ते नब्ज भी नहीं चल रही।
3: डॉक्टर

0: संतुष्ट सी, पर मेरी तमन्ना सी कि मेरी सवेर च भी कोई किरण आ जाए।
1: वाह वाह कवि जी महाराज, किस चलाकी ते नजाकत नाल अपनी मशूक ते क्लासमेट किरण नू याद कीता।
0: तू मल, तू सिर्फ पैसे नू समझ सकता है, प्यार नू नहीं, ते वो भी सच्चे प्यार नू ना। किरण मेरे दिल की धड़कन सी ते हुण भी है, पर मैं उन्हूं प्राप्त नहीं कर सकिया क्योंकि वो लोग कारां वाले ते मैं एक साइकिल सवार।
1: अशोक, तैनूं तां उन्हें धोखा दे ही दिता ना।
0: ना ना तुम्हार ना, मैं अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर सकिया। खैर, उसने पता लग्या कि किसी विमल चंद नाल शादी कर ली
1: है। कमीने विमल नाल, हा हा, पठा बिठाता किरण दा ते तेरे प्यार दा।
0: तू जानता है विमल चंद नूं?
1: हाँ हाँ, उस धोखेबाज हरामी नूं कौन नहीं जानता। वो कमीना मेरा सारा हिस्सा हड़प गया, उन्हें डोब दिता, मैनू दिवालिया बना दिता।
0: अच्छा, तो तुसी दोवे पार्टनर सी?
1: हाँ।
0: बिजनेस की थी?
1: ओ यार, स्मगलिंग, काला बाजारी, मिलावट वगैरह।
0: अच्छा, तो तू इस देश द्रोह नू बिजनेस कहना?
1: ओ यार, बिजनेस तो नफा है, पैसा कमाउण नू कहिंदे ने, इस विच देश द्रोह कित्थों आ गया। चार सालां च असीं 30 करोड़ रुपए कमाए, उस कमीने ने मेरे 15 करोड़ मार ले।
0: बेईमानी की कमाई इसे तरह डुबदी होती है, हुण तू कुछ कर भी नहीं सकता।
1: मैं उदा सत्यानाश करके रख दूंगा, तैनू पता नहीं शरीर छड़ के मैं कितना ताकतवर हो गया।
0: हाँ पता है, पता है। कहते हैं कि मरण तो 13 दिन बाद तक बंदे का संबंध

0: तुमल तुमल मेरे दोस्त, ओ की हो गया तेनू?
1: अशोक तू आ गया, बहुत डरावना सुपना सी।
0: देखता सही, तू तो पसीने पसीने होया पिया है।
1: अशोक सुपने च मैं नरक दे विच आ, उत्थे मैनू बहुत बड़ी अग च सुट रहे आ। मैं चीकदा हत्थ पैर मारदा पर कोई फायदा नहीं। फिर मैं देखदा वह मैनू बहुत वड्डे डूंगे काले खूह च धक्का दे रहे आ। मैं भजन की कोशिश करदा पर कई आत्मावां मैनू घेर लैंदियां।
0: आत्मावां? हाँ आत्मावां, किस तरह की आत्मावां?
1: अन्नियां लंगड़ियां हत्था पैरों तो बिना पैड़े पैड़े रोकां वालियां आत्मावां।
2: पापी नीच कमीने, तेरे कारण साड़ी ये हालत हुई है। रब ने धरती बनाई, किसानां ने अन्न उगाया, रब ने मीह नाल उसनू सींचिया, ते तू बेवकूफा स्वार्थी लालची पैसे दे पुत्तर, तू अन्ना आज च जहर मला दिता। तू औरतां दे सुहाग खोले, मामा कोलों पुत्तर ते बच्चियां कोलों उना दे मां प्यो खोलीते। ओए कमीनिया, खानियां तां तू भी दो रोटियां ही सी, ओए नोट तां तू नहीं खाने सी बेशर्मा। ओए तन्नू तां असी कुच्चो खोजो मोगियो।
1: ते उस सचमुच मैनू खान दौड़ी, ते उदो मेरी चीख निकल गई।
0: खैर हुण मैं समझ गया
1: कि
0: तेरे पाप तेरे अगे आ रहे ने। तू बहुत बुरे काम कीते है, लोगों नू जहर खिलाई है, समगलिंग कीती है।
1: पर यारे दे विच खराब गल की हो गई, सारे लोग अजे यही काम करते ने, जे मैं कर लिते तां की पहाड़ टुट पिया।
0: तुमल तू अपने गलत कमां नू भी सही दस रहा, पर तेरी आत्मा तेनू कोसती होवेगी। उती जे वार्निंग भी तू ना सुने तो कोई की करे। सुपने वाली अग ते खूह तेरे कर्मा की तस्वीर है, जिहड़ी तेरी आत्मा ने तेनू विखाई है।
1: अशोक ते हुण मैं की करा, कोई उपा दस।
0: उपा तो इहदा इक्को ही है, पश्चाताप। पर तेरे कर्मा का फल तेनू जरूर भोगना ही पैना है।
1: कर लूंगा पश्चाताप भी, पर पहला मैं विमल चरण का नाश्ता कर लवा।
0: आ गया ना अपनी आने वाली थां ते। ओ बाबा, पश्चाताप ते बदला नाल नाल नहीं चलते।
1: ना चलन, पर मेरे भरा मेरी एक मदद कर दे।
0: की?
1: विमल दी पत्नी किरण तेनू प्यार कर दी है ना, तू जे किरण नू कहे क्यों विमल दी तिजोरी विचों जरूरी कागज मैनू दे देवे।
0: ना, किरण नहीं करेगी ये काम, उहदे सुखी जीवन विच मैं तूफान नहीं लियावांगा।
1: ठीक है, ते हुण मैं जावांगा विमल दा बेड़ा डोबण। मैं भूत बन के धरती ते चलिया।

0: तेरे पीछे पीछे आवांगा।
1: ले पैने गए प्रेम दा बदला लैण दोवें भूत धरती ते।
2: भूतां दी तां कदे गति नहीं हुंदी, चल पैना थल्ले इन्हां दा तमाशा देखिए।

0: देख अशोक, ओ देख विमल चंदा महल, मरदूद ने मेरी दौलत हड़प के बना लिया ये महल। सौरिया होवेगा चांदी दे पलंग ते किरण नू बाहां च लैके, हुणे पठा बिठाउणा जाके दोहां दा।
1: ना तोमल ना, मेरी किरण नू कुछ ना कही, नहीं ता
0: ओ नहीं ता की कर लेगा। ओ विमल चंदा तू की बिगाड़ लिया, ओ जिहड़ा तेरी किरण नू तैथों खो के लै गया। लै देख ओए शोकिया, ओ देख ओए बाग च संगमरमर दे थड़े ते दोनों गलवकड़ी पाई बैठे आ। ओए किरण नू दूजे बंदे दियां बाहां च देख के तैनू गुस्सा नहीं आउंदा? ओए जा जा, ओ देख ओ किरण दियां कचरारियां अखां किस तरह उस भैड़े बदशकल विमल नू प्यार नाल देख रहीआं।
1: देख तोमल, तू मैनू तैश ना दे।
0: ओ तैनू तैश वड़ेवें दा होणा, ओ किरण नू हथ तां ला के दिखा।
1: तू मेरा इम्तिहान लै रहीआं?
0: यही समझ लै।
1: लै ते लै फिर।
2: नशा पानी कीता लगता है।
3: ओ नशा तो तेरिया अखा च है किरण।
2: छड़ो भी, की करते हो? हाय मैं मर जा। हाँ, कौन सी? हाय।
3: की गल है किरण, डर क्यों गई है अचानक?
2: विमल, विमल इत्थे कोई है? सच्ची इत्थे कोई है?
3: अपने दोहां तो सवा तां कोई नहीं।
2: नहीं नहीं नहीं विमल, हुणे हुणे मैनूं इंज लगा जिवें किसे ने मैनूं मैनूं जिवें किसे ने बर्फ फड़ के ठंडे हथ नाल जिवें मैनूं फड़ लिया। हाय रब्बा, पता नहीं कौन है, मैनूं बड़ा डर लग रहा है। विमल, मैनूं बड़ा डर लग रहा है।
3: ओए आ गई, मैनू भी किसी बर्फ वर्गे ठंडे हाथों ने फड़ लिया। बचाओ बचाओ बचाओ
4: बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ।
0: ओए कोई ना आवे अगे, एक पैर भी ना पुटना। मैं विमल नहीं तुमल हां, विमल दे शरीर विच
1: ते मैं अशोक हां, किरण दे शरीर विच।
0: अशोक किरण नू कह जे अपना सहाग बचाउणा चाहुंदी आ तां अपने खसम दी तिजोरी चों कागज़ कढ के लियावे, मेरे 15 करोड़ रुपये भी देवे।
5: देखिया पैना की कर रही दोनों आत्मावां भूत बन के
6: हुणे तांत्रिक आवेगा ते मार मार के इना चो भूत कढेगा।
5: यमदूत आ गए?
6: इना दोनों नू लैन आए होने हैं।

0: बोल चित्रगुप्त, अज दा कोई खास समाचार?
1: दो नवे जीव आए ने महाराज।
0: इन्हों दा वेरवा बोलो।
1: धरती उत्ते एक दा नाम तूमल सी ते दूसरे दा अशोक। महाराज 84 लाख जूना पोगत के इन्हां नूं अपने कल्याण करन लई मनुख दी जून मिली सी, पर ये बंदे मोह माया विच ही फसे रहे।
2: ये झूठ है धर्मराज, मैं कदी मोह विच नहीं पिया।
0: चुप रहो, साढ़े दरबार विच झूठ लई कोई थां नहीं। आ चित्रगुप्त,
1: इस अशोक नाम दे जीव नूं अपने हंकार नाल बहुत मोह सी। पुराने संस्कारां करके जो कर्म ये करदा सी उन्हां नूं अपना त्याग समझदा सी। ये अपने आप नूं खुले दिल वाला समझदा सी। इत्थों तक इहदा प्रेम भी दूषित है महाराज।
2: नहीं महाराज, मेरा प्रेम दूषित नहीं सी।
0: चुप रहो।
1: महाराज, इसका प्रेम भी दूसरे लोगों वांग सी, पर ये उस नूं त्याग ते आदर्श कहिंदा सी।
2: महाराज,
0: तैनू भी बोलन का मौका देंगे।
1: ते महाराज, इस दी प्रेमिका नू भी इस दे कारण हाथों वध तकलीफां कटनियां पईयां।
2: मेरे कारण?
1: हाँ हाँ, तेरे कारण।

0: मालिक मालिक जागो उठो, आ की बोली जा रहे हो? हे रब्बा तेरा लख लख शुक्र है, मालिक नू होश आ गया है।
1: डॉक्टर लगता है रब ने एक बार फिर धरती ते वापस भेज दिता है इन्हां नू। कांग्रेचुलेशंस।
2: मैं नरक चो किस तरह बच गया? मैं किथे आ मैं?
0: मालको तुसी हॉस्पिटल चो, आ देखो सिस्टर, आ देखो डॉक्टर, ते मैं किशनू।
2: ते ओ ओखी सी नरक वर्गा है।
0: ओ मालको तुहाडा तां दूजा जन्म होया है।
2: हाँ किशनू, नरक दी यात्रा तो बाद सचमुच मेरा दूजा जन्म ही होया। पुराना सेठ तुमल मर गया, ते नवा तुमल जांदा है। मैं पश्चाताप दी अग विच सड़ रहा है किसनू। मैं प्राश्चित करके अपनी आत्मा नु शुद्ध करना चाहुंदा। नर्स
1: जी, मिस्टर तुमलचंद,
2: मैनू पता कि हस्पताल विच मेरे कमरे नु पुलिस ने घेरा पाया होया। तू मेरे काले तंदे दे बारे जानना चाहुंदी सी ना?
1: जी मिस्टर तुमल, पर तुसी ज्यादा ना बोलो, अजी आराम करो।
2: नहीं सिस्टर, जब तक मैं पश्चाताप नहीं कर लेंदा मैनू चैन नहीं आवेगी। तुसी पुलिस इंस्पेक्टर नू बुलाओ।
3: शेख जी मैं थी खड़ा वहां ते हाँ, मैं मैजिस्ट्रेट साहब नू भी बुला चुका है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मजिस्ट्रेट साहब, मैं अपना बयान लिखवाना चाहता।
4: जे तुसी अपना बयान लिखा सकते हो तो ठीक है, लिखाओ।
2: लिखो जनाब, मेरिया अखां ते लालच दा पर्दा पै गया सी। मैनू तन तो सवाए कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा सी। मैं रातों रात करोड़पति बनना चाहता सी। मैं बिमल चंद नू अपना पार्टनर बनाया, ते विदेशी माल सोने चांदी दी समगलिंग शुरू कर दिती। नाल ही असी चोर बाजारी रिश्वत दी मिलावट ते होर तंदे चालू कर दिते। 4 साल च असी 30 करोड़ रुपए कमा ले। उन्हां दियां सोने दियां इट्टां बनवाइयां ते बिमल चंद दी इमली वाली कोठी दे तहखाने च लुको दित्तियां। तहखाने दा रास्ता रसोई विच्चों जांदा। तुसी उस सोने ते कब्जा कर लो जनाब, मैनू मेरा हिस्सा नहीं चाहिदा। मैं अपने किते ते दिलों पछता रहा जनाब, दिलों पछता रहा। तुसी मैनू गिरफ्तार कर लो, तुसी जो सजा दोगे मैनू कबूल है।
4: मैं तुहाडा बयान नोट कर लिया इंस्पेक्टर
3: सर।
4: कानूनी कार्रवाई की तैयारी करो।
3: यस सर।

लोक गीत साढ़े पंजाब दी आत्मा दी आवाज ने पंजाब दी धरती लोक गीतां दी धरती है। लोक गीत लोकां दा ही सांझा सरमाया ते सभ्याचार ने क्यों जो इना विच ही सरब सांझी जिंदगी दी धड़कन ते दुख सुख दा चलका रहे। लोक गीत ही ने जो पंजाब दी जीउंदी जागदी तस्वीर ने। लोक गीत पंजाबियां दियां खुशियां गमियां ते दिलां दे उबाल ने जेड़े आप मुहारे वह तुरदे ने ते सदियां पुराने हुंदे हुयां भी सदा सजरे लगदे ने। मां शब्द कहंदियां ही मूँह माखियों मिठी मिठास नाल भर जांदा है। मां जिसका प्यार अमुख अकै ते असगा है। मां जन्मदाती है ते प्रफुल्लत दाती वी। होर तां होर मां ममता दी देवी है जिसनू असी रब्बी रूप ते नूर भी कह सकते हाँ। साढ़े पंजाबी लोक गीत भी मां प्यार नाल ओत प्रोत ने।

मां मां अखवान विच फखर महसूस कर दिए उस दे इस पावक वलवले विच अथा सचाई परिपईए मनुखी जीवन जन्म तो मरण तीक लोक गीता नाल लथ पथ होया मिलदाए मनुखी जीवन दिया खेड़ा विच भी मां शब्द पंजाबियां दे मानसिक वलवलिया नाल परिया ते परोया होया मिलदाए मां बच्चे नू लोरी भी देंदी ए ते लोक गीत दे रूप विच।

0: जे बाल मां तो मुंह ना धोवे तां भी मां प्यार नाल उदा मुंह लोक गीत नाली धोंदी है।
1: इची बीची कोको खाए क्यों दी चूरी काका खाए चिड़ी बिचारी की करे ठंडा पानी पी मरे।
0: जदों ती जवानी दी दहलीज ते कदम रख दिए ता उदे पराए घर जान दियां गल्लां होण लग पैंदियां ने ते ती मां नूं कहंदी है

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक्-वक् चैनल अते आकाशवाणी दे वक्-वक् भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

सिर नाही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह। ए फरमान साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों उचारित है। पंचम गुरदेव अकाल पुरख के चरणों विच बेनती करते ने कि हे दातार प्रभु मैनू अपने नाम की दात बख्शो, मेरे ते किरपा करो कि मैनू आप जी का नाम कदे ना विसरे। मेरे मन विच यही उमंग है, यही चाह है कि मैं आप जी दे गुण गायन करदा रवां। बेशक प्रभु दे गुण बयान नहीं कीते जा सकते, उस दे गुण गायन भी नहीं कीते जा सकते, पर अकाल पुरख जेकर आप किरपा करे तां ये संभव हो सकता है। क्या गुण तेरे सार संभाली मोह निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई ए जियो पिंड सब थारे। सरवण करदे आं भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे, बैखरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द। प्रभु प्यारे जन गुरमुख जन उस परवरदिगार दी भगती विच लीन रहिंदे हन, सदा उस दी उस्तत करदे रहिंदे हन, ओ खुद उस्तत अते निंदा तों उपर हुंदे ने। ते जे कोई ऐसे भले पुरशां दी निंदिया भी करदा है तां भी ओ अपना गुण गायन करन वाला सुभा त्याग दे नहीं। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावै। सरवण करदे हां डॉक्टर गुरनाम सिंह होरां वल्लों गाया होया ये शब्द।

0: हरजन राम नाम गुन गावे, जे कोई निंद करे हरजन की अपना गुन ना गवावे। इस शब्द गायन की तासी डॉक्टर गुरनाम सिंह होरा ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलवंत सिंह।
1: बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत् विस्थारा, विच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। ए पावन पवित्र शब्द सोडी सुल्तान सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी दी पवित्र रसना तों उचारण कीता होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पवित्र अंग 719 उपर सवाए मान है। बैराड़ी राग दा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर 13वां स्थान है। इस शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां विच सतगुरु बख्शिश करदे हन। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। परमात्मा दा भगत सदा गुण गांदा रहिंदा है। जां इंज कहा जा सकदा है कि स्वामी दा गुलाम स्वामी दी महिमा गायन करदा रहिंदा है। जे कोई मनुख उस भगत दी निंदिया भी करदा है तां उह भगत अपना गुण गवाउण वाला सुभाव नहीं त्यागदा, सगों अठे पहर उस मालक दी सिफत विच लगा रहिंदा है। अजिहे गुण परमात्मा जिस भगत जन नूं बख्श देण ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

रसो इस शब्द की व्याख्या ज्ञानी बलवंत सिंह होरां पासों जिहड़े वड्डे पागां वाले प्राणियों ने पूर्वले चंगे कर्म किते हुंदे ने उही उस प्रभु दे गुण गायन करदे ने, उस प्रभु दा नाम जपदे ने, उस परमेश्वर दा नाम विकारियां नूं भी पवित्र करन वाला है। पतित पावन प्रभ तेरो नाओ, पूरब कर्म लिखे गुण गाओ। सरवण करदे हां भाई दर्शन सिंह कोमल अते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

पतित पावन प्रभ तेरो नाओ, पूरब करम लिखे गुण गाओ। आप जी सरवण कर रहे सो पाई दर्शन सिंह कोमल ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृतः सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पहे नानक तां का दास है सोई निरंजन देव महला।

0: अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो। श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो।
1: नारद त्रुहु प्रहलाद सुदामा पुब भक्त हर के जो गणं अम्बरीक जय देव तलोचन नामा अवर कबीर पढ़ं। तिनको अवतार भयो कल पिंतर जस जगतर पारे सायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो। मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तनंग। बाचा कर समरंत तुझे तिन बाचा कर समरंत तुझे तिन दुख दरित्र मिट्यो जो खनंग। कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो।
2: जे सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटै खिन। जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै। जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निध पावै। सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो।
3: जिन शब्द कमाए परम पद पायो। सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो। दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे। तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जीव अंगद।

जहे पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नाम अवखद नाम आधार, अर नाम समाध सुख।

अहन ससहज सुभाई दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसमदी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्ची पात सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोही है सब नादा विसा।

गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब।

स्तंभ स्वामी सच में अच्छे साज रहे सब कुछ सच समावे हरि कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैं सूर नायले प्राचित जाहे नानक तो मुखंतर बाहे जुजवा जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया बार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में मेद थर्म हुआ नाम खुदाई लो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक प्राणी अमल किया चारे वेद होए सत्यार प्रेम में दिन चार विचार भाव भगत कारे नीच सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सत